0: वेदन पर ब्रह्म परमेश्वर आराधनानिक हर हर हरे।
1: मनुख दिया बुनियादी मूल कमजोरिया बिचों प्रबल कमजोरी अहंकार आहं मैं हां मैं हां मैं हां। जिन्ने चिर तक ये मैं रहती है ये अहं भाव रहता है उतने चिर तक ही जन्म ते मरण चलता रहता है चलता रहता है। ये जन्म ते मरण का मूल है ये जन्म ते मरण का कारण है। धन गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान होमे एहा जात है होमे कर्म कमाए होमे एही बंदना फिर फिर जौने पाए। होमे दा स्वभाव है मनुख जितने भी कर्म करता है अहंकार आशक्त चाहे वो कर्म धार्मिक ने चाहे वो कर्म सामाजिक ने चाहे वो कर्म राजनैतिक ने अहं मूल है अहं मिश्रित हो जाता है हर कर्म में और वो कर्म जो अहं आश्रित है जन्म का कारण बनता है जन्म मरण का कारण बनता है और वो अहं का बंधन फिर जन्म फिर मरण फिर जन्म फिर मरण इस तरह अहं जन्म ते मरण की बहुत लंबी यात्रा विच पा देता है बहुत लंबे गेट विच पा देता है। धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज प्रमाण कर रहे ने हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा हे पाप आत्मा अहंकार तू जन्म ते मरण दा मूल है। वख वख जीवा विच अपने अपने दोष पाए जाते हैं जैसे असी वेखदे हां हाथी विच काम रोग प्रधान है और पतंगे विच दृष्टि रोग मच्छी विच रसना दा रोग और इसी तरीके नाल भौरे विच नासका दा रोग होने रोग मानुख को दीना काम रोग मैं गल बस कीना दृष्ट रोग पच मुए पतंगा नाद रोग खप गहे कुरंगा हिरन्नो नाद दा कन्ना दा रोग जो जो दीसे सो सो रोगी रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। ये रोग बंधन का कारण बनते ने ये रोग दुख का कारण बनते ने और मनुख दे सारे दुखों का मूल कारण अहं अहंकार अहंकार किधरे अस्थूल रूप धारण करता है किधरे सूक्ष्म रूप किधरे पदार्थों का अहंकार किधरे धार्मिक कर्म जो परमात्मा के प्रति किए गए ने उसका अहंकार किधरे इस जीवन का अहंकार किधरे उस परम जीवन की प्राप्ति के जो साधन ने उन्हां दा अहंकार। मूल रूप विच ये अस्थूल अहंकार धन आश्रित होंदा है, जोगन जवानी स्वपन दे आधार से खड़ा होंदा है, और शक्ति सता ताकत इसके आधार पे खड़ा होता है। जो बन धन प्रभ ताक मद में अहनिस रहे दीवाना, दिन रात पागल की तरह घूम रहा है। जो बन दी मस्ती रिच, धन दी मस्ती रिच और सता दी मस्ती रिच। धन जेब रिच होवे या मन दी सोचनी रिच होवे, जोबन वंत होवे या जोबन दी चाह मन रिच होवे, सताधारी होवे या सता दा चिंतन अंदर चलदा होवे, दोहां हालतां च पागल हो जांदा है। सता पागल कर देंदी है, सता दा चिंतन भी पगला देता है। जो बन पागल पंदी सीमा तक ले जाता है, पर जो बन दा चिंतन भी पागलों वाली हालत बनाई रखता है। इसी तरीके नाल धन, धन जेब देच है, धन घर देच है या धन सोचां देच है, विचारां देच है, मनुख ते पागल होवेगा। इसका बहुत वड्डा पागलपन धन आश्रित है, जोबन आश्रित है और सता आश्रित है।

मनसा बाचा कर्मणा मैं देखे दोजक जात। हर एक नू छोटा समझदा है, चाहे अगला महान होवे, चाहे स्वयं तुच्छ होवे, अपने आप नू महान समझदा है, उच्चा समझदा है, सब तो उच्चा समझदा है। ईरानी सूफी संत हाफिज फरमान कर देने, दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, जिस दी महफिल विच खुर्शीद ए सूरज एक जर्रा है, एक निक्का जिया रेत दा जर्रा है। दर महफिले के खुर्शीद अंदर शुमार जर्रास्त, खुदरा बजुर्ग दीनम शर्ते अदब नवाशद। उस महफिल विच तू अपने आप नू आखे मैं वड्डा, मैं वड्डा, मैं महान हाँ, जिथे सूरज भी एक निक्के जिया जर्रे वर्ग है, इसकी भी कोई औकात नहीं। पर मनुख दी भुल, मनुख दा अज्ञान, और जितना प्रबल अज्ञानी होवेगा उतना अहंकारी होवेगा। एक उर्दू दा महान शायर इसनों एक होर ढंग नाल भी बयान कर देने, इल्म के जहूल से बेहतर है जहूल का इल्म, मैंने ये दर्श पाया अपनी बसीरत से। ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता दा ज्ञान, इलम दी जहालत नालों चंगा है जहालत दा इलम। अगर थोड़ा बहुत कुछ समझे है, आलम होया है, विद्वान होया है, और कई गुणा उस तो वद अहंकार नाल भर गया है, तो अहंकार इस गल दा सबूत है जो इलम है वो अमल विच नहीं, और ए अहंकार मूर्खता ते खड़ा है। इलम के जहूल से बेहतर है जहूल का इलम, ज्ञान दी मूर्खता दे नालों बेहतर है मूर्खता का ज्ञान। अहंकार अज्ञान ते खड़ा होता है, ज्ञानी भी अज्ञानी समझो अगर अहंकारी है। भगत सरमौर श्री रविदास जी महाराज बड़ा सुंदर फरमान कर रहे हैं, हम बड़े कवि कुनीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुद्ध कभे ननासी कह रविदास सभे नहीं समझसे भूल परे जैसे बोरे। इति सारे भूल के पागल होए फिर देने, कौन हम बड कव, मैं बहुत वड्डा कवि, मैं बहुत वड्डा कवि, मेरी कविता महान, बस यही जहालत ले फिर दी है। कुलीन हम पंडित, मेरी कुल बहुत उच्ची तो मैं उच्चा, मैं पंडित इस वास्ते मैं महान। हम बड कव कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, मैं बहुत वड्डा जोगी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा सन्यासी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, मैं बहुत वड्डा ज्ञानी इस वास्ते मैं बहुत वड्डा, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते ए बुद्ध कवे नानासी, मैं बहुत वड्डा सूरवीर, मैं बहुत वड्डा दानी। कहते ने

0: अहंकार अक्सर गुणा ते ही खड़ा होंदा है और गुणवान ही ज्यादा अहंकारी होंदा है, क्योंकि अवगुणा के आसरे ते अहंकार नू अस्थूल रूप धारण का मौका नहीं मिलता। एक गल वखरी है कि मूर्ख गुण ना होंदया भी अहंकार विच जलदा है, पर उसका अहंकार इतना बोझल नहीं आता, उसमें इतना बोझल नहीं करता। यह गल वखरी है कि वह अहंकार मूर्खता से खड़ा है, अवगुणा से खड़ा है। नानक ते नर असल खर जो बिन गुण गर्व करन, इक ना नाद ना बेद। इकद नू न किसी प्रकार की विद्या, न संगीत का ज्ञान, गे रस रस कस ना जानन। इक ना सुरत ना सिद्ध, अक्कल सिर अक्षर का भयो ना लहन। अक्षर का कोई बोध नहीं, अकल दे तल ते जी नहीं रहा। संगीत का कोई बोध नहीं, किसी धर्म ग्रंथ का कोई ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी अहंकार नानक ते नर असल घर जो बिन गुण गर्व करन, असली खोते ने अहंकार भी पंड चुकी कर देने। पर बड़ा प्रबल अस्थूल अहंकार प्रगट अहंकार ते गुणा ते ही खड़ा होंदा, और अहंकारी दिया अखां, अहंकारी दा मस्तक, अहंकारी दी चाल स्पष्ट रूप विच अहंकार दी प्रदर्शनी करदी है। भगत कबीर कहंदे ने, चलत कत टेढ़े टेढ़े, अहंकारी सीधा चल ही नहीं सकता। अगर सीधा चले तो उसकी चाल का पता नहीं चलता, टेढ़ा चलता है ताकि लोगों दी निगाह मेरे ते आवन। निर्माण मनुख चाहता है मैं परमात्मा की निगाह थले आ जावा, अहंकारी चाहता है सारिया दी निगाह मेरे ते आवन, सब मैनू ही देखन। चलत कत टेढ़े टेढ़े, अस्त चरम बिस्टा के मुंडे, दुर्गंध ही के बेडे, तू है कि हड्डियां हड्डियां देते चढ़े होया मांस, मांस देते चढ़ी हुई चर्बी, और चर्बी देते लिपटी हुई खलड़ी, और किया तू हड्डियां का मान, जोबन जवानी का मान, हड्डियां का मान, मांस का मान, मिंज का मान, और खलड़ी का मान, इस तो अलावा और है कि एक आया कि इतनी नापाक है, कोई भी पवित्र चीज इस नाल छू जाए मैली हो जाती। और इस काया का अहंकार धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज फरमान कर देने, कर्पूर बहुत सुगंधा, पर्स मानक देहं मलीनं, मजा रुदर दुर्गंधा, नानक अथ गर्वेण अज्ञा नड़ो। कपूर ते चंदन जैसिया, फुलना जैसिया पवित्र वस्तुआ, मनुखी तन नल छूंदे हां, स्पर्श करदे हां, मैलियां हो जांदियां ने। मजा रुदर दुर्गंधा, नानक अथ गर्वेण अज्ञा नड़ो, है कि दुर्गंध खून मिंड मांस कलड़ी। अज्ञानी एवं तन का अहंकार करता है, जो बंदा अहंकार करता है, फिर धन का अहंकार, धनवंता होए क्या को गर्वे, जा सब किस तिसका दिया दरबे। पुरखा ईश्वर वसीला ना बने, धन कितने उस दे वसाहिल नाली सब कुछ प्राप्त होंगे है, और सब तो वड्डा वसीला है ए तन, और तन उस दी देन है। ये दिमाग उसकी देन है और ये तन ते मन दे आखरे ते तू धन इकट्ठा कर लिया तो वसीला ते प्रभु है, वसीला ते परमात्मा है, पर धन दा अहंकार सता प्रभता इसका अहंकार अगां चलिए ता अहंकार नू बैठन वास्ते कोई गुणा दा सिंघासन चाहिए है। दान दा अहंकार, ज्ञान दा अहंकार, सेवा दा अहंकार बड़े नवे तो नवे सिंघासन अहंकार अपने बैठन लई बनाई दा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है, बनाई जांदा है। और गुणा दे आसरे ते बैठ के एक प्रसन्न बड़ा होंदा है क्योंकि जगत तो जस मिलता है, जगत तो माण मिलता है, वो माण इसके अहंकार नू होर वधांदा है, होर वधांदा है। देखने विच आया धन है तो धन ते अहंकार बैठ गया है, फिर धन दा त्याग है तो त्याग ते अहंकार खड़ा हो गया है, हुण त्याग दा अहंकार। सता कोल है, सता दा अहंकार, सता दा त्याग कर देता है, हुण त्याग दा अहंकार। ऐसा अक्सर देखण नूं मिलदा है। पहले जो कोल है उसका अहंकार, फिर जो कोल है उसका त्याग कीता है, उस त्याग का अहंकार, अहंकार नवे तो नवे रस्ते लगता है। और अहंकार तो बचना औखा, जिहड़ा सिंघासन भी असी निरंकार नू बिठाण लई बनाने हां अहंकार बैठ जाता है। दान दा सिंघासन बड़ा सोहना बनाया सी, भगवान आके बैठे, निरंकार आके बैठे, अहंकार आके बैठ जांदा। सेवा कर रहे सी ताकि सेवा दे सिंघासन ते प्रभु आके बैठे, नहीं अहंकार आके बैठ गया। सिमरन माला दे राही, रसना दे नाल जप दे राही आरंभ कीता ताकि ए जप ए माला दा फिरना प्रभु प्राप्ति दा साधन बन जाए, पर इससे भी अहंकार खड़ा हो गया। अहंकारी नूं दूसरे तुच्छ प्रतीत आउंदे ने, अहंकारी अपने आप नूं महान समझदा है। और कई दफा अहंकार इतनी चरम सीमा ते पहुंचता है उदी दृष्टि च निरंकार भी कुछ नहीं, वो स्वयं दावा कर उठता है मैं ही निरंकार, मैं ही निरंकार, दावा कीता सी हरनाथ कृष्ण ने मैं परमात्मा, कौन होंदा है परमात्मा, दावा कीता सी नमरूद ने मैं हाँ खुदा, कौन होंदा है खुदा। अहंकारी अपने तो वड्डा किसी नूं भी मनन नूं तैयार नहीं। इस वास्ते अहंकारी दा सिर झुकदा ही नहीं, झुकदा ही नहीं, आकड़िया रहिंदा सिर। और उसके सामने माता छोटी है, पिता छोटा है, गुरु छोटा है, प्रभु छोटा है, कोई भी वड्डा नहीं, सिर्फ वो खुद वड्डा बनता है और वड्डा होके दिखाण दी कोशिश करता है। सारी भज दौड़ अहंकार लई है, निरंकार लई नहीं। किस तरह मैं सारे लोगों दियां निगाहां दा मरकज बन जावां, केंद्र बन जावां, हर एक दी निगाह मेरे ते टिके और हर एक दा मान मैं हो जावां, मेरे ते मान करन, और इस तरह मेरा अहंकार शिखर ते पहुंचे। सारी भज दौड़ अहंकार दिए, इंज कह लईए यात्रावां ते दो ही ने, अहंकार दी यात्रा, निरंकार दी यात्रा।
1: निरंकार की यात्रा आरंभ होती है। तू है, तू है, तू है, तू है। अहंकार की यात्रा आरंभ होती है। मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ, एक जन्म मरण का कारण बन जाती है। तू है, तू है, तू है, एक जन्म मरण नु मिटा के प्रभु का रूप बना देंदी है। बूंद सागर विच लीन हो जाती है, ईश्वर का रूप हो जाता है मनुख। भगत कबीर कहते ने, तू तू करता तू भया, मुझ में रहा न हूं, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। तू है, तू है, तू है, इस वृत्ति ने, इस जप ने तेरा ही रूप बना दिता। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई न सके पछानी। तू है, तू है, तू है, इसने भगवान का रूप बना देता। मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ, ये शैतान का रूप बना देता। शैतान ही है वो जिसका सब कुछ अहंकार आश्रित खड़ा है। भगवान का रूप है जिसके रोम रोम देच, जिदिया सारिया क्रियावां देच भगवती प्रदर्शित, भगवती नुमाइश हो रही है, परमात्मा ही प्रकट हो रहे हैं। श्री रविदास सही कह रहे हैं, जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही, मैं ना ही। जब मैं सी तू नहीं सी, हुण तू है मैं नहीं। तू ते मैं दोवें इको सिंघासन ते नहीं बैठ सकते। महाराज की बाणी का फरमान, हौमें नावे नाल विरोध है, दोए न वसे इक ठाए। ते मैं ते तू दोवें कठे नहीं रह सकते, या तू है या मैं हां। अहंकारी की सारी साधना है मैं हां, मैं हां, उदी सारी भज दौड़, उदी सारी क्रिया, उदी सारी तपस्या, उदी सारी मेहनत, किस कारण हो रही है? मैं पर विनम्र मनुख दा, संत दा सब कुछ तू आश्रित है, तू ही है, तू ही है, तू ही है। उठे मैं भी कोई चिंगारी नहीं रहती जिस विच गुण भस्म हो जाते हैं। बस तू ही, तू ही, तू ही। एक आलम का कहना है, अज रहा चनार, अज रहा चुनार, कि सलामत न कुनद, इस ढंग नाल चल रस्ते देच, कि किसे दा सिर मजबूरन ना झुके, इतना आकर के ना चल। बाखलक चुना जी के कयामत न कुनद, खलकत देच इस ढंग नाल रह, कि तेरे रहन दे नाल कयामत ना होगे। दर मस्जिद गर रवि के चुना जाओ के तोरा, दर पेश न खुआनद और इमामद न कुनद, कि किधरे इबादत करनु तेरा जी करे, तो निमाजिया दे पिछे होके नमाज पढ़ी, किधरे अग्गे होके नहीं। ऐसा ना होवे कि तेरे अंदर इमाम बनन दा चाव पैदा हो जाए और नमाज पढ़दिया मस्जिद दे छी तो कह उठे कि मैं ही सब तो वड्डा, मैं ही सब तो वड्डा। अक्सर धार्मिक मंदिरों दे छी ते लोकी प्रधानगी लभदे ने, ते प्रधान ते परमात्मा है। या फिर जिसका मिट गया सारा अहंकार, वो प्रधान हो सकता है। सगल पुरख में पुरख प्रधान, साध संग जाका मिटे अभमान, जो संगत दे चरणा दी खाक हो गया मस्तक दा तिलक ते फिर ओही बनदा है। पर जो पहले ही मस्तक दे ते असवार होके बैठा है, शायद उसनु मखलूक दे कदमा दे भी जो है ठा ना मिले, पर अहंकारी ते सिर ते बैठने की कोशिश करता है। अहंकारियां दे आसन सिंघासन लोगों दे सिर दे ते ही होंदे। सारी राजनीति सारी सता अहंकार आश्रित है, और अहंकारी सिरा ते ही ते बैठता है। कई दफा सिर हिल जाने ने ये थले गिड़दा है। इस वास्ते कहंदे ना गरूर का सर नीचा। आखिर जो लोगों दे सिर झुकाना चाहता है, एक दिन इसका सिर नीवा होके रह जाता है, अहंकारी शर्मसार होके रह जाता है। इस वास्ते अहंकार परमात्मा दे विचकार एक बहुत वड्डी दीवार है, एक बहुत वड्डी दीवार है। सारी धार्मिक साधना इस दीवार नु तोड़न वास्ते है। पर अहंकार बड़ा चलाक है, ये धार्मिक साधना नु भी अपना सिंघासन बैठा बना देंदा है। बैठना सी उसते प्रभु ने आप बैठ जांदा है।

सकते ज्यों कुंचर स्नान। सारी धार्मिक साधना हाथी का इशनान बन के रह जाती है। सारे धर्म नो अहंकार अधर्म विच बदल के रख देंदा है और इस तरह अहंकार तो पैदा ए अधर्म जन्म ते मरण का कारण बनता है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा, हे पापात्मा अहंकार तू जन्म ते मरण का मूल है। हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा नितरं तजन्त सतरं दृढ़न्त अनेक माया विस्थिरने। यह अहंकार तेनू दुश्मन बनाने ही आंदे ने, मित्र बनाने की तेनू जाच नहीं। अहंकारी दे मुंहों ना निकलदा, अहंकारी हां नहीं कर सकदा। जब सारा माहौल ही ऐसा होए और हां कहने की सहूलियत भी होवे, कुछ बिगड़ना भी ना होवे, तां भी हां नहीं कहेगा, ना ना। जितनी ताकत ज्यादा होए उतने जबान पे आ जाता है, ना नहीं ना नहीं। कोई कम है और अक्सर कम कार लई लोकी सरकारी दफ्तरां दे जांदे ने। जितनी जिस कोल समर्था है ताकत है उस हिसाब नाली वो ना करता है, ना करके दसना चाहता है मैं तेनू रोक सकदा, मैं तेरे कम नू रोक सकदा। अहंकार इस महीने विच कि भारत बहुत अहंकारी देश हो गया है, ना ना ना। हां कहना ही भुल गया, हां कहने विच इनू अपना छोटापन प्रतीत आंदा है। जायज गल भी नौकर ने कह दिती है, जायज मंग भी एक नौकर ने मंगी है, ता भी मालक कहिंदा है ना। नौकर दी हां च हां मिला गई है, ना। अहंकारी ना करदा है, सबनों ना करदा है, और जिथे तक इसकी सता है उथे तक ना करदा है, और जितना ना ना करी जांदा है उतनी दुश्मनी बढ़ती है। तो पातशाह ठीक कह रहे ने, मित्रं तजंत सतरं दृढ़न्त अनेक माया विस्तीरने। अहंकार दी माया दा इस तरीके नाल विस्तार होंदा है, इसे दुश्मनी वधदे। ईरानी सूफी संत जनाब हाफिज कहंदे ने, दरख्ते दोस्ती बनिशां के कामे दिल बबारा रद निहाले दुश्मनी बरकुन के रंजो बेशुमारा रद। दोस्ती दा बूटा ला, मिलाप दा बूटा ला, जे तो खुदा दा मिलाप चाहना है। जे किधरे भुलेखे नाल तो दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है, इसनों आज ही जड़ों पुट दे। सिवाय दुखां दे सूल तो इस बूटे नूं होर कुछ भी नहीं लगता। अमृत फल खाना चाहना है, दोस्ती दा बूटा ला। भगत आत्मदर्शी मनुख ते सारे जहान नूं मित्र बना लैंदा है। सबको उम्मीद हम आपन की ना, हम सब ना के साजन। किस तरह सारी कायनात नु उसने मित्र बना लिया, पशु पक्षियां तक नु।
जड़ चेतन सबनू अपना मित्र बना लिया। जिंदगी तो बड़ी छोटी है, दुनिया बड़ी वड्डी है, सारियां नू मित्र बनाया आखिर किस तरीके नाल? गुरबाणी ढंग दसती है, एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब बात। जब उस एक नू सज्जन बना लैंदा है ते एक नाल सज्जनता दा जब रिश्ता जुड़दा है तो सारी अनेकता उस एक दे आसरे ते खड़ी है, अनेकता भी सारी सज्जन बन के रह जाती है, जीवन धन हो जाता है। कहिंदे मित्रां विच जीवना स्वर्ग विच जीवना है, दुश्मनां विच जीना नरक विच जीवना है। नरक ही भोग रहे ने ओ जो कहिंदे गलियां दे कख भी वैरी ने, पर स्वर्ग दे चो ने जिन्हां ने शैतान नू भी मित्र बना लिया, दुष्टां नू भी मित्र बना लिया। सब मित्र सबको उम्मीद हम आपने कीना, पर ये युगत अहंकारी दे कोल नहीं आउंदे। अहंकारी जे अस्थूल ढंग नाल नहीं अगर उदारमक है तो सूक्ष्म ढंग नाल चोट पहुंचावेगा। बड़ी सुंदर एक गाथा है, एक संत बैरागी जंगल विच कुटिया बना साधना विच लीन है, कि साधना सारी सिर्फ अहंकार नू मारन वास्ते है, और जिस दिन अहंकार मरदा है निरंकार प्रगट होंदा है। अहंकार जितने चिर तक है जन्म ते मरण चलदा है, और जैसे निरंकार प्रगट होंदा है जन्म मरण मिट जांदा है। सदा साधना विच लीन ये योगी ये संत। एक राजा आया दर्शना लई, तपस्या साधना दी बड़ी दूर दूर तक धुम पई। बहुत तपीश्वर है, बहुत जपीश्वर है, बड़ा संजमी है। राजा दर्शना लई आया है, दर्शन कर राजा प्रसन्न होया है। उसने एक बड़ी कीमती मोतियां नाल जड़त पोशाक चोला भेंट कीता। पानी साधु कहन लगा, हुण असी इस तरह दे चोले पहनना छड़ दिता है, असी ते तन दिते सिर्फ कमली धारण कर रहे हैं। पर राजा कहन लगा, आखिर मैं खाली हथ किस तरह जो है आपके दर्शन करा, ये नजराना है, ये भेट है, चलो नहीं पाना, आप रख लो, दे देना किसी नू। राजा ये नजराना रख के चला गया। कुछ दिन बाद इस त्यागी वैरागी साधु का एक मित्र, बूढ़ा मित्र, बचपन का दोस्त, और वो भी साधु से, वो भी तपस्या कर रहा से, मिलन ले आया है। लालवन 10 मील दी वाट पैदल चल के ये जंगल विच संत दी कुटिया कोल पहुंचे है। दूरों वेख इस संत ने स्वागत कीता है और सत्कार मान नाल बिठाया है। रस्मी गुफ्तगू तो बाद जो दीक्षा तो भोजन आया सी वो छकाया। रात बड़े सोहने ढंग नाल प्रभु चर्चा करदियां बतीत हुई। सवेरे इस बैरागी साधु ने कोई 3 घरां दे जाना है नाल दे पिंड, उन्होंने अपने घरां दे चरण पाण लई बुलाया है। ये बैरागी साधु आए हुए मेहमान मित्र नू कहिंदा है, इत्थे कल्लियां बैठे हां, तुसी तंग हो जाओगे, आओ मेरे नाल चलो।
मैं तीन घरां विच जाना है, तुसी मेरे नाल चलो, फिर वापस आ जांदे हां। इस बैरागी साधु ने वो जो राजे ने कीमती चोला दिता सी, मोतियां नाल जड़त बड़ा खूबसूरत, वो कट के दिता और आखे ए पा लो, कस्बे ते चले हां, तुसी पा लो। वो साधु कुछ बेनियास, ये मेहमान साधु और ये मित्र साधु जो आया है, रमजी मनुख, हरक सोग तो उच्चा मनुख, पहन लिया उसने वो चोला, कीमती चोला। जैसे दोवें कस्बे के अंदर दाखिल होते हैं, सारिया की निगाह उस चोले ते और चोला जिस साधु ने पहने है उस ते। दुखी हो गया है बैरागी साधु है, कल तक मैं जब इस कस्बे विच आउंदा सी, सारिया दियां निगाहां मेरे ते, अज ये निगाहां फिर गई ने, अज ते मेरे मित्र ते, चोला दिता है लेकिन अंदर ख्याल आया है, हैं ये तो मेरे नालों महान प्रतीत होंदा है, सारे इसनों पे वेखदे ने, खैर जिस घर विच जाना सी गए। आओ भगत होई, सन्मान नाल बिठाए गए और घर वालिया ने सुभावक पूछिया उस बैरागी साधु तो, ये जो नाल आए ने ये कौन ने? क्योंकि सारे घर वाले अखां फाड़ फाड़ के उसनु वेख रहे ने, सोना चोला पहने होया है, मुखड़े ते शांति झलक दी है, निर्माणता बिखर दी है, रहस विस्माद अखां दे विच है, तो सारे घर वाले उस तो प्रभावित ने, पुछदे ने संत जी ये नाल फटे कौन आए ने? दुख तो के कहिंदा मेरे मित्र ने कल आए सन, मेरे बचपन के दोस्त ने, साधु ने, साधना करदे ने, बड़े ज्ञानी ने, जपीश्वर ने, तपीश्वर ने, पर ये जिहड़ा चोला है ना ये मेरा है। हुण इस ढंग नाल ते तारफ नहीं कराईदा, लेकिन अहंकार उबल पिया, बुलवा दिता अहंकार ने, मेरा है चोला, मेरा है। खैर जब इस घर तो रुखसत होए, उस मेहमान साधु ने कहा, मित्र तू कपड़े पवा के भी मैनू नंगा कीता, चोला पवा के भी तू मेरे कपड़े उतारे, कोई इस तरह तारुफ कराई दा? खैर माफी मंगण लग पया, कहन लगा नहीं, अचानक मेरे मुंह में बोल निकल गया है, तुसी बुरा ना मनाओ, बुरा ना मनाओ, दूसरे घर गए। दूसरे घर वालों की भी निगाह इस साधु पे, अखां विच रमज है, बिस्मात है, चेहरे से शांति है, और सब तो वड्डी गल जिस तो ये घर वाले प्रभावित हो रहे हैं, इतना कीमती चोला, इतना सुंदर चोला, तो दूसरे घर वालों ने भी यही पूछा, संत जी ये नाल कौन महात्मा आए ने, ये कौन ने? तो एकदम बोल पे, मेरे बचपन के दोस्त ने, बाल सखा ने और साधु ने, तपस्या करने ने, ज्ञानी ने, रह गई इस चोले की गल, ये चोला मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, इस दे वो कह गया है,
मेरा है, मेरा है, मेरा है। खैर उस घर तो जो निकले ये बैरागी साधु फिर माफी मंगता है, मित्रा मैनू इस तरह भी नहीं कहना चाहिदा सी, पर निकल गई है गल, तू सहन कर ले, बर्दाश्त कर ले, हुण मैं नहीं कहांगा। तीसरे घर गए, आओ भगत होई बिठाए गए, पर वो चोला तीसरे घर दे भी सारे मनुखा नु प्रभावित कर रहे है, नर नारी बच्चे सब प्रभावित उसे साधु नु देख रहे हैं। सवाल पूछ रहे है, संत जी ये नाल कौन आए ने, ये केड़े संत ने, तो हुण तारुफ करांदा है, मेरे बाल सखा मित्र ने, जपीश्वर ने, तपीश्वर ने, ज्ञानी पुरुष ने, पर रह गई इन्हां कपड़ियां दी गल, इस चोले दी मैं इस दी गल नहीं करने, ना गल करके भी कर गया। जब उस तीसरे घर तो रुखसत होए, कुटिया च पहुंचे, इस मेहमान साधु ने, इस दोस्त साधु ने चोला उतार के अग्गे रख दिता, आखिया तीन दफा तू नंगा कीता है, पहले अपना चोला हुण चौथी दफा मैं आप ही उतार देना, तीन दफा तू उतरवाया, तीन दफा तू लगन कीता है। अहंकारी अपने मित्र का भी मान सम्मान बर्दाश्त नहीं कर सकता, अहंकारी अपने गुरु की महानता भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, वो मित्र नु छुपाएगा, मां बाप गुणवान ने तो उन्होंने पिछे सुटेगा। विद्या गुरु है या अध्यात्म गुरु है, उसनु भी हंकारी छुपाण की कोशिश करेगा, पिछे सुटेगा। महाराज की बाणी बड़ा सुंदर फरमान कर दिए, जो गुरु गोपे अपना ते नर बुरियारी, ये बड़े बुरे पुरुष आते ने हंकारी, गुरु नु भी छुपाते ने, क्यों? फिर मेरी मैं, मेरा वडपना फिर किथे? ते मित्र नु छुपाते ने, पुत्र नु छुपाते ने, अगर गुणवान है मां बाप नु पिछे सुटदे ने, सिर्फ अपने आप नु ही अगे करना इन्हां दी जिंदगी दा लक्ष्य है। और यतन कोशिश ए भी आउंदी है, रब नु भी पिछे सुटीए, परमात्मा नु भी पिछे सुटीए। हर नाकस ने पिछे सुटन दी कोशिश कीती सी, नमरूद ने कह दिता सी कौन हुंदा है खुदा, मैं खुद खुदा हां। तो अहंकार अपने तो वड्डा किसे नु भी नहीं मन सकता, अहंकार जीवदा मैं आश्रित तू ते बिल्कुल भूल जांदा है। एक उर्दू शायर ने बड़ी सुंदर नजम लिखी है, बकरे दे बोल नु अग्गे करके, कि बकरे दा बोल है मैं मैं मैं, इसे नु आधार बना के इस शायर ने बड़ी सुंदर कल्पना की थी है। फखर बकरे ने किया

0: के गर्दन पर छुरी कसा बने।
1: कसाई दे छुरे हेठ आ गया, ने जबा कर दिता, सिर वज दिता।
0: गोश्त हड्डी और चमड़ा जो था जिसमें जार में, कुछ लूटा कुछ पिस गया कुछ बिक गया बाजार में। रह गई ताते फिकते मैं।

नदा फुसे धुन की बनाने के लिए, जरब की सोटों की जिस दम तांत घबराने लगी। उस तांत देते उस आंत देते नदाफ जोरदार सोटा मारदा, बस उस नाली रुई पिंगी जांदी है। जरब

अपन के ना हम सब ना के साजन दूर पर आयो मन का बिलहा तो मेल कियो मेरे राजन। जेरे विचार मनुख नू मनुख नाल नहीं जुड़न देंदे ओ विचार मनुख नू परमात्मा नाल भी नहीं जोड़नगे। बड़े ध्यान नाल सुनना, जेड़े विचार मनुख नू मनुख तो दूर कर देने ओ विचार मनुख नू परमात्मा तो भी दूर करनगे, खुदा तो भी दूर करनगे। सारी दुनिया अपनी सज्जन सारे ही दोस्त ने, ये किस तरह हो सकता है? फिर थानू तत्ती तवी ते किसने बिठाया है जे सब थोड़े सज्जन ने? थानू उबलदी देग दे छिट किसने बिठाया है जे सारे ही थोड़े मित्र ने? दरअसल इस बोल नू समझा, धन गुरु अर्जन देव जी ये कह रहे ने, मेरी तरफों सब मेरे मित्र ने, कोई मैनू मित्र समझे ना समझे उदी मर्जी। मेरी तरफों सारे मेरे सज्जन ने, कोई मैनु सज्जन समझे ना समझे उदी मर्जी। सबको मीत हम अपन के ना हम सब ना के साजन। इस संबंध च ईरानी सूफी संत हाफिज कहिंदा, शुनीदम के मर्दाने राहे खुदा, जो खुदा दे रस्ते ते चलदे ने, रब दे मार्ग ते चलदे ने जेड़े, शुनीदम के मर्दाने राहे खुदा, दिले दुश्मना न कर दंद तंग, वो दुश्मन दे दिल नूं भी जरब नहीं पहुंचांदे, वो दुश्मन दे दिल नूं भी नहीं तोड़दे, जो रब दे मार्ग ते चलदे ने इतने कोमल होंदे ने। शुनीदम के मर्दाने राहे खुदा, कहिंदा मैं सुनिया जो रब दे मार्ग ते चलदे ने वो दुश्मन दे दिल नूं भी चोट नहीं पहुंचांदे। शुनीदम के मर्दाने राहे खुदा, दिले दुश्मना न कर दंद तंग, तुरा की मुयस्सर शब्द ई मकाम, के बादोस तानत खिलाफ अस्त जंग, तैनू ए रुतबा कदों नसीब होवेगा, तू ते दोस्तां दा जीवना हराम कीता होया है, तू ते भरावां दे दिल नूं भी जरब पहुंचांदा, तू ते अपनियां नूं भी चोट पहुंचांदा, तू ते अपने परिवार नूं भी चोट पहुंचांदा, अपने भरा नूं भी चोट पहुंचांदा, पड़ोसी नूं भी चोट पहुंचांदा। मैं ते सुणिया जो रब दे मार्ग ते चलदे ने दुश्मन दे दिल नूं भी चोट नहीं पहुंचांदा। दुश्मनी एक ऐसी अग है जेदे च मनुख दे सारे रब्बी गुण जल के सुआह हो जांदे ने। इनू तात कहिंदे ने, तात अग्नि, पराई तात पराई दुश्मनी अग। ते अग दा ते कम है कुछ ना कुछ जलावेगी। गुरु अर्जन देव जी महाराज दा फैसला, जिस दे अंदर तात पराई होवे, मैं सतगुरु दे बोल थोड़े सामने रख रहे हैं, जिस दे अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवे भला। क्यों? जिस दे अंदर पराई तात आउंदा है, जिस दी अंदर दुश्मनी है पराई, दुश्मन दा हर वक्त बुरा मंगेगा, भला नहीं मंगेगा। इस हद तक भी बुरा मंगेगा, मेरी पग लेंदी है कोई गल नहीं, दूजे दी लेनी चाहिए, भावे मेरे सिर ते नहीं रहिंदी ते ना रवे। मेरा घर बने भावे ना बने, दूजे दा ठहना चाहिए। मैनू इज्जत मिले भावे ना मिले, दूजे दी बेइज्जती होनी चाहिए है। इनू पराई तात कहिंदे। मैनू नफा होवे भावे ना होवे, दूजे नू नुकसान होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। मेरे सिर ते पग भावे रवे भावे ना रवे, दूजे दी ते लैनी चाहिए। इनू कहिंदे पराई तात। जिस दे अंदर पराई तात है, वह पराया बुरा मंगदा है, हर वक्त पराया बुरा मंगदा है। ते गुरबाणी दा फैसला, जेड़ा पराया बुरा मंगदा है, दूजे नू बुरा देना चाहता है,

0: listening to KRPI 1550 Radio, Ferndale, Washington.
1: गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र बाणी ए तुर की बाणी दुखां दा कलेशां दा नाश करन वाली बाणी एक ओंकार तो लैके 18 10 20 तक सारी बाणी सर्व कल्याण करन वाली कल्याण रूप बाणी है। महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। अज संसार वल जाती पाईए हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। महाराज बाणी विच भी इस संसार दी हालत नूं दसदे हन कि जिस मनुख पै करो बेनती सो अपने दुख भरिया। हर मनुख नूं कोई ना कोई दुख लग्या होया। किसे दा कार विहार नहीं चलदा, किसे दे कार तों दुख नहीं निकलदा, किसे नूं मुकदमा पै गया, किसे दे घर औलाद नहीं होई तां दुखी है। जे औलाद है तां हुकम विच नहीं है ओ तां दुखी है। अनेक तरह दे होर दुख हन। इना सारिया ही दुखां दा जो दवा है औषधि है महाराज बख्शिश करदे हन सर्व रोग का अवखद नाम। मेरा बैद गुरु गोविंदा हर हर नाम अवखद मुख देवै काटै जम की फंदा। मेरा सतगुरु ऐसा वैद है कि मेरे तन दे रोग भी मिटा देंदा है, मेरे मन दे रोग भी मिट जांदे हन। केड़ी दवाई देंदा है, आख्या हर हर नाम अवखद मुख देवै। जदों नाम दी सिमरन दी दवाई गुरु ने मैनू बख्शी ना तो मैनू इस संसार दे दुखां दी तत्ती वा लगी, ना जमा दी तत्ती वा लगी। एथे ओथे आप परमेश्वर रखवाला हुआ। तो उस पवित्र बाणी विचों कुछ शब्द रख्या दे आप दी भेटा कर रहा। ए सर्व रोग दा नाश करन वाली बाणी, पर एक शर्त है, श्रद्धा प्यार सिदक दे नाल अमृत वेले जाग के इशनान करके ए बाणी पढ़िए तां फिर दुख नेड़े नहीं आ सकदे। आओ सारे गुरु की बाणी दा ए अभ्यास करिए, क्योंकि गुरु की बाणी तां है ही ऐसी।

0: नानक कहूं नसे जई बिन नामे पत जाए अष्टपदी।
1: दस वसूले पाछे पावे,
0: एक वस्त कारण बिखो टकवावे,
1: एक पीना दे दस पी हिर ले,
0: दो मूड़ा को कहां करे,
1: जिस ठाकुर से नाही चारा,
0: ठाकुर की जय सद नमस्कार,
1: जापे मन लगा प्रम मीठा,
0: सर्व सुखता हु मन बुठा,
1: जिस जन अपना हुक्म मनाया,
0: सर्व सुख नानक तिन पाया,
1: अगंत शाह अपनी दे रास,
0: हाथ पीत बरते अनंत उलास,
1: अपनी ईमान कश बहो शाह हो ले,
0: अज्ञानी मन रोस करे,
1: अपनी प्रतीत आप ही घोवे,
0: और उसका विश्वास न हो,
1: बस्ते सागर रखे,
0: रोकी आज्ञा मन ने मथ,
1: उसके चौगन करे निहाल,
0: नानक साहिब सदा दयाल,
1: नानक भांत माया के हित,
0: सर पर होवत जान अनेत,
1: बिरख की छाया स्यों रंग लावे,
0: ओ बिन सह ओ मन पछतावे,
1: जो दिस सो चालन हार,
0: लपटर होत अंधे अंधार,
1: घटाऊ स्यों जो लावे नेह,
0: ताको हाथ न आवे के,
1: मन हर के नाम की प्रिय सुखदाई,
0: कर कृपा नानक आप ले लाई,
1: मिथ्या तन धन कुटुंब सपाया,
0: मिथ्या होमे ममता माया,
1: मिथ्या राज जोगन धन माल,
0: मिथ्या काम क्रोध विकराल,
1: मिथ्या हस्ती असु वस्त्रा,
0: मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता,
1: मिथ्या ध्रोह मोह अभिमान,
0: मिथ्या आप से ऊपर कर्त गुमान,
1: सिर भक्त साध की शरण,
0: नानक जप जप जीवै हर के चरण,
1: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनहे,
0: मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे,
1: मिथ्या नेत्र पेकत पात्रया रूपाद,
0: मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद,
1: मिथ्या जन्म पर विकार कुता वहे,
0: मिथ्या मन पर लोभ लबावे,
1: मिथ्या तन ही पर उपकारा,
0: मिथ्या बास लेत विकारा,
1: बिन बूझे मिथ्या सब भये,
0: सफल दे नानक हर हर नाम लये,
1: मिथि साक्त की आरजा,
0: साच बिना कह हो सुचा,
1: बिरथा नाम बिना तर अंध,
0: मुखे आवतता कह दुर्गंध,
1: बिर सिमरन दिन रैन बिरथा विहाय,
0: एक बिना ज्यों खेती जाए,
1: गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम,
0: कृपन के निरार्थ दाम,
1: धन तन तेज अन देह घट बस्यो हर नाऊ,
0: नानक ताके बल बल जाओ,
1: रहते अवर कश अवर कमावत,
0: मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावत,
1: जान नहार प्रभु प्रवीन,
0: बाहर पीक न काहू भीन,
1: अवर उपदेश है आप न करे,
0: आवत जावत जन मैं मरे,
1: जिसके अंतर बसे प्रभाप,
0: जिसकी सीख तरह संसार,
1: जो तुम भाने दिन जाता,
0: नानक उन जन चरण पराता,
1: करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने,
0: अपना किया आपे मन,
1: आप करतन बेरा,
0: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा,
1: पाप सियानप सकल ते रहत,
0: सब कछ जाने आत्म की राहत,
1: जिस भावै तिस लये लड़ लाए,
0: शांत अंतर रह समाए,
1: सो सेवक जिस कृपा करी,
0: निमक निमक जप नानक हरी श्लोक,
1: काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव,
0: नानक प्रभु शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी।
1: जे प्रसाद छत्ती ही अमृत खाहे,
0: जिस ठाकुर को रख मन माहे,
1: जे प्रसाद सुगंध तन लावहे,
0: जिसको सिमरत परमगत पावे,
1: जे प्रसाद बसे सुख मंदर,
0: जिसे ध्याए सदा मन अंदर,
1: जे प्रसाद गृह संग सुख बसना,
0: आठ पहर सिमरो तिस रसना,
1: जे प्रसाद रंग रस भोग,
0: नानक सदा ध्याए ध्यान जोग,
1: जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावहे,
0: जिसे त्यागत अवर लुभावे,
1: जे प्रसाद सुख सेज सोई जय,
0: मन आठ पहर ताका जस गावीजे,
1: जे प्रसाद तुल सब पू मान,
0: मुक्ता को जस रसन बखान,
1: जे प्रसाद तेरो रहता धर्म,
0: मन सदा ध्याए केवल पार ब्रह्म,
1: रब जी जप्त दरगाह मान पावहे,
0: नानक पत से ती कर जावे,
1: जे प्रसाद अरोकंचन देही,
0: निबला बोत सराम स्नेही,
1: जे प्रसाद तेरा ओला रहत,
0: मन सुख पावे हर हर जस कहत,
1: जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाके,
0: मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके,
1: जे प्रसाद तुझ को न पहुंचे,
0: मन साह साह सिमरो प्रभु उच्चे,
1: जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे,
0: नानक ताकी भगत करे,
1: जे प्रसाद अभूखन पहरीजे,
0: मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजे,
1: जे प्रसाद असवर सवारी,
0: मन तिस प्रभु कभु न बिसारी,
1: जे प्रसाद बाग मिलख तना,
0: राग प्रय प्रभ अपने मना,
1: जिन तेरी मन बंत बनाई,
0: उठत बैठ सत्य सह ध्याय,
1: इसे ध्याय जो एक लख है,
0: इहां उहां नानक तेरी रख है,
1: जे प्रसाद करहे पुन बहुदान,
0: मन आठ पहर कर तिसका ध्यान,
1: जे प्रसाद तू आचार व्यवहारी,
0: जिस प्रभु को सास सास तारी,
1: जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप,
0: सो प्रभु सिमरो सदा अनूप,
1: जे प्रसाद तेरी नीकी जात,
0: सो प्रभु सिमर सदा दिन रात,
1: जे प्रसाद तेरी पत रहै,
0: गुर प्रसाद नानक
1: जे प्रसाद सुनहे कर्ण नाद,
0: जे प्रसाद पेखे विस्माद,
1: जे प्रसाद बोलहे अमृत रसना,
0: जे प्रसाद सुख सहजे वसना,
1: जे प्रसाद हस कर चलहे,
0: जे प्रसाद संपूर्ण फल है,
1: जे प्रसाद परम गत पावहे,
0: जे प्रसाद सुख सहज समावे,
1: ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लग हो,
0: गुर प्रसाद नानक मन जागो,
1: जे प्रसाद तू प्रकट संसार,
0: इस प्रभु को मूल न मनो विसार,
1: जे प्रसाद तेरा प्रताप,
0: जे मन मूड तू ताको जाप,
1: जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे,
0: जिसे जान मन सदा हजूरे,
1: जे प्रसाद तू पावहे साच,
0: जे मन मेरे तू ता राज,
1: जे प्रसाद सब की गत होए,
0: नानक जाप जपै जप सोए,
1: आप जपाई जपै सोनाओ,
0: आप गवाए सो हर गुण गाओ,
1: प्रभ कृपा ते होए प्रकाश,
0: प्रभु दया ते कमल विगास,
1: प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए,
0: प्रभ दया ते मत उतन होए,
1: सर्व निधान प्रभ तेरी माया,
0: आपो कछु न किन्हु लया,
1: जित जित लाभ होते तो लगे हैं हर नाथ,
0: नानक इनके कछु न

0: अष्टपदी।
1: जब अकार एहो कछ न दिष्टेता,
0: पापन तब कहते होता।
1: जब धारी आपन सुन समात,
0: वैर विरोध के संग कमात।
1: जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत,
0: हरक सोगो कसै व्यापत।
1: जब आपन आप आप ब्रह्म,
0: मोह कहाँ किस होवत परम।
1: आपन खेल आप वर्तीजा,
0: नान कर्म हार न दूजा।
1: जब होवत पर केवल धनी,
0: जब बंद मुगत कहो किस कहो गनी।
1: जब एक ही हर अगम अपार,
0: जब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार।
1: जब निर्गुण प्रभ सह सुपाही,
0: जब शिव शक्त कहो गित ठाए।
1: जब आप ही आप अपनी ज्योत धरै,
0: जब कवन निडर कवन कत डरै।
1: आपन चलित आप करने हार,
0: नानक ठाकुर यज्ञ पार।
1: अवनासी सुख आपन आसन,
0: जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन।
1: जब पूर्ण करता प्रभ सोए,
0: तब जमकी त्रास कहो किस होए।
1: जब अवगत अगोचर प्रभ एका,
0: तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा।
1: जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे,
0: तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे।
1: आपन आप ही अचरजा,
0: नानक आपन रूप आप ही उपरजा।
1: जय निर्मल पुरख पुरख पत होता,
0: जय बिन मैल कहो क्या तोता।
1: जय निरंजन निरंकार निर्वाण,
0: जय कौन कमान कौन अपमान।
1: जय स्वरूप केवल जगदीश,
0: जय शल छिद्र लगत कौ कीस।
1: जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै,
0: जय किसै भूख कवन तृप्तावै।
1: करन करावन करनै हार,
0: नानक करते का नहि समार।
1: जब अपनी शोभा आपन संग बनाई,
0: तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई।
1: जय सर्व कला आपे प्रवीण,
0: जय वेद देव कहाँ को चीन।
1: जब अपन आप आप उतार है,
0: शगन आप शगन कहाँ विचार है।
1: जय आपन ऊंच आपन आप नेरा,
0: जय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा।
1: विस्मन विस्म रहे विस्माद,
0: नानक अपनी गत जान हो।
1: जय छल अशेद अभेद समाया,
0: वहाँ कसे व्याप्त माया।
1: आप उसको आप ही आदेश,
0: गुण का ना ही प्रवेश।
1: जय एक एक एक भगवंता,
0: जय कौन अचिंत किस लागे चिंता।
1: जय आपन आप पतियारा,
0: जय कौन कथे कौन सुनने हारा।
1: बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा,
0: नानक आप उसको आप पहुँचा।
1: जय आप रचियो प्रपंच आकार,
0: गुण मैं की नो विस्तार।
1: पाप पुन तह पई कहावत,
0: ओ नरक को स्वर्ग विषावत।
1: काल जाल माया जंजाल,
0: मैं मोह परम पै भार।
1: दुख सुख मान अपमान,
0: अनक प्रकार की उपख्यान।
1: आपन खेल आप कर देख,
0: खेल संकोच तो नानक एक।
1: जय अवगत भगत है आप,
0: जय पसर पसार संत प्रताप।
1: तुम पाप का आप ही धनी,
0: उनकी शोभा उन्हों बनी।
1: आपे कौतुक करे अनब जोज,
0: आपे रस भोग निर्जोग।
1: जिस भावे तिस आपन नाय लावे,
0: जिस भावे तिस खेल खिलावे।
1: बेशुमार अथाह अगन अतुल,
0: ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। श्लोक
1: जी जंत के ठाकुरा, आपे वर्तन हार।
0: नानक एको पसरिया, दूजा कै दृष्टार। अष्टपदी
1: आप कथे आप सुनने हार,
0: आपे एक आप विस्तार।
1: जांत पावे तां श्रेष्ठ उपाय,
0: अपने भाने लय समाये।
1: तुम ते भिन्न नहीं किश होए,
0: आपन सूत सब जगत परोए।
1: जाको प्राप्ति आप बुझाए,
0: सच नाम सोई जन पाए।
1: सो समदर्शी तत् का बेता,
0: नानक सगल सृष्टि का जेता।
1: जी जंत्र सबका कै हाथ,
0: दीन दयाल अनाथ को नाथ।
1: जिस राख तिस कोय न मारे,
0: सो मुह आज समनो बिसारे।
1: इस तक अवर कहां को जाए,
0: सब सिर एक निरंजन राय।
1: की जुगत जा कै सब हाथ,
0: अंतर बाहर जानो साथ।
1: गुण निधान बेअंत अपार,
0: नानक दास सदा बलहार।
1: पूर्ण पूर रहे दयाल,
0: सब पर हो बित कृपा।
1: अपने कर्तव्य जाने आप,
0: अंतर जामी रहो व्याप।
1: प्रत पाले जी अनुभव भांत,
0: जो जो रचियो सो तिसे त्यात।
1: जिस भावे तिस लय मिलाए,
0: भगत करे हर के गुण गाए।
1: मन अंतर विश्वास कर मान्या,
0: कर्म हार नानक एक जाने।
1: जन लागा हर एक कै नाई,
0: जिसकी आस न वृथि जाए।
1: सेवक को सेवा बन आई,
0: हुकम बूझ परम पद पाई।
1: इसके ऊपर नहीं भी
0: जाके मन बसया निरंकार,
1: बंधन तोर भय निर्वैर।
0: हर दिन पूजा गुर के पैर,
1: ये लोग सुखी परलोक सुहेले।
0: नानक हर प्रभ आपे मेले,
1: साथ संग मिल करो आनंद।
0: उनका वो प्रभ परमानंद,
1: राम नाम तत् करो विचार।
0: दुर्लभ देखा करो उदार,
1: अमृत वचन हर के गुण गाओ।
0: प्राण तरन का यह स्वभाव,
1: आठ पैर प्रभ एक नेरा।
0: मटिया ज्ञान बिन सह अंधेरा,
1: उपदेश हृदय बसावो।
0: मन इच्छे नानक फल पावो,
1: हलत पलत तो लेहो सवार।
0: राम नाम अंतर उतार,
1: पूरे गुर की पूरी दिखिया।
0: बसे ते साच परीखिया,
1: मंत्र नाम जपो लिबलाए।
0: दुख दर्द मन ते पाओ जाए,
1: सच व्यापार करो व्यापारी।
0: दरगह निभ खेप तुम्हारी,
1: एक टेक रखो मन माहे।
0: नानक बहुर न आवे जाहे,
1: इससे दूर कहाँ को जाए।
0: उबरे राखन हार ते आए,
1: निर भव जपै सकल भव मिटै।
0: प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै,
1: जिस प्रभ राखै तिस नाहीं दुख।
0: नाम जपत मन होवत सुख,
1: चिंता जाए मिटै हंकार।
0: तिस जन को कोई न पहुँचन हार,
1: सिर ऊपर ठाड़ा गुरसूरा।
0: नानक ताके कार्ज पूरा,
1: मत पूरी अमृत जानकी।
0: दर्शन पेखत उदरत सृष्ट,
1: चरण कमल जाके अनूप।
0: सफल दर्शन सुंदर हर रूप,
1: भान सेवा सेवक परवान।
0: अंतर जामी पुरख प्रधान,
1: जिस मन बसै सुहोत निहाल।
0: ताके निकट न आवत काल,
1: अमर भये अमरा पद पाया।
0: साध संग नानक हर त्याया। श्लोक
1: ज्ञान निरंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश।
0: हर कृपा ते संत पेटिया, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਰਗਾਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸੰਤ ਸੰਗ ਅੰਤਰ ਪ੍ਰਭ ਡੀਠਾ
0: ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਲਾਗਾ ਮੀਠਾ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਏਕ ਘਟ ਮਾਹੇ
0: ਅਨਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੈ
1: ਨੌ ਨਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ
0: ਇਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾ ਵਿਸਰਾਮ
1: ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਅਨਹਦ ਤਹਿਨਾਦ
0: ਕਹਿ ਨ ਜਾਈਏ ਚਰਤ ਬਿਸਮਾਦ
1: ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਆਪ ਦਿਖਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਦਿਨ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ
1: ਸੋ ਅੰਤਰ ਸੋ ਬਾਹਰ ਅਨੰਤ
0: ਘਟ ਘਟ ਵਿਆਪ ਰਿਹਾ ਭਗਵੰਤ
1: ਧਰਨ ਮਾਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ
0: ਸਰਬ ਲੋਕ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਪਾਲ
1: ਅੰਤਿਨ ਪਰਬਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
0: ਜੈਸੀ ਆਗਿਆ ਤੈਸਾ ਕਰਮ
1: ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਤਰ ਮਾਹੀ
0: ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਾ ਦਿਸੈ ਸਮਾਹੀ
1: ਇਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਕੋ ਠਾਉ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਪਾਉ
1: ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਮਹਿ ਦੇਖ
0: ਸਸਿਆ ਸੂਰ ਨ ਖਤਰੇ ਮੈਂ ਏਕ
1: ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ
0: ਆਪ ਡੋਲ ਨਾ ਕਬ ਹੁਣ ਡੋਲੇ
1: ਸਰਬ ਕਲਾਕਰ ਖੇਲੈ ਖੇਲ
0: ਬੋਲ ਨਾ ਪਾਈਏ ਗੁਣੇ ਅਮੋਲ
1: ਸਰਬ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਗੀ ਜੋਤ
0: ਧਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਵਾਮੀ ਓਤ ਪੋਤ
1: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭਰਮ ਕਾ ਨਾਸ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਮੈਂ ਇਹੋ ਵਿਸਾਸ
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਵੇਖਣ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ
0: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕਾ ਹਿਰਦੈ ਸਭ ਧਰਮ
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਸੁਨੇ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ
0: ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਰਾਮ ਸੰਗ ਰਚਨ
1: ਜਿਨ ਜਾਤਾ ਤਿਸ ਕੀ ਇਹ ਰਹਿਤ
0: ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧੂ ਸਭ ਕਹਿਤ
1: ਜੋ ਜੋ ਹੋਏ ਸੋਈ ਸੁਖ ਮਾਨੈ
0: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਾਨੈ
1: ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਬਾਹਰ ਪੀਓ ਹੀ
0: ਨਾਨਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਸਭ ਮੋਹੀ
1: ਆਪ ਸਤ ਕੀ ਆ ਸਭ ਸਤ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਸਗਲੀ ਉਤਪਤ
1: ਇਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਕਰੇ ਵਿਸਾਰ
0: ਇਸ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਏਕੰਕਾਰ
1: ਅਨਕ ਕਲਾ ਲਖੀ ਨਹਿ ਜਾਏ
0: ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ
1: ਕਵਨ ਨਿਕਟ ਕਵਨ ਕਹੀਐ ਦੂਰ
0: ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਭਰਪੂਰ
1: ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਸ ਆਪ ਜਨਾਏ
0: ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਆਪ ਬੁਝਾਏ
1: ਸਰਬ ਭੂਤ ਆਪ ਵਰਤਾਰਾ
0: ਸਰਬ ਨੈਣੇ ਆਪ ਖਨਹਾਰਾ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਕਾ ਤਨਾ
0: ਆਪਣ ਜਸ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾ
1: ਆਵਨ ਜਾਨਿ ਖੇਲ ਬਨਾਇਆ
0: ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਇਆ
1: ਸਭ ਕੈ ਮਤ ਅਲਿਪਤੋ ਰਹੈ
0: ਜੋ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਆਪੇ ਕਹੈ
1: ਆਗਿਆ ਆਵੈ ਆਗਿਆ ਜਾਈ
0: ਨਾਨਕ ਜਾ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਲਏ ਸਮਾਏ
1: ਇਸੇ ਹੋਈ ਸੁਨਾ ਹੀ ਬੁਰਾ
0: ਉਰੇ ਕਹੋ ਕਿਨੈ ਕਛ ਕਰਾ
1: ਆਪ ਭਲਾ ਕਰਤੂਤ ਅਤ ਨੀਤੀ
0: ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਤੀ
1: ਆਪ ਸਾਜ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ
0: ਪੋਤ ਪੋਤੇ ਆਪਣ ਸੰਗ ਰਾਜ
1: ਤਾਂ ਕੀ ਗਰਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ
0: ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋਜੀ ਪਾਏ
1: ਇਸ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਪ੍ਰਵਾਨ
0: ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਾਣ
1: ਜੋ ਜਾਣੈ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ
0: ਆਪ ਮਲਾਏ ਲਏ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ
1: ਉਹ ਧਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ
0: ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦਾ ਭਗਵੰਤ
1: ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ
0: ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ
1: ਜਾਣਿਆ ਮਨ ਕਾ ਇਹ ਸੁਆਉ
0: ਜਨ ਕੇ ਸੰਗਤ ਆਵੈ ਨਾਮ
1: ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ

सारे मजहब भी उस तो आउंदे न जिहदा कोई मजहब नहीं है। ऐ शब्द भी सुन लो महाराज गुरु गोबिंद सिंह जी दे, नमस्तम अमजबे, नमस्कार है प्रभु तैनू, तेरा कोई मजहब नहीं, कोई मजहब नहीं। नमस्तम अमजबे, नमस्तस्त अजबे, हे अजब स्वरूप परमात्मा तैनू नमस्कार, तेरा कोई मजहब नहीं। ना तू हिंदू है, ना तू मुस्लिम है, ना तू सिख है, ना तू ईसाई है, ना तू यहूदी है, ना तू पारसी है, ना तू जैनी है, ना तू बौद्धी है, तेरा कोई मजहब नहीं, तेरी कोई जात पात नहीं, तेरे कोई तात मात नहीं, तेरा कोई मजहब नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बड़ी हिम्मत से बड़ी जुरत दिखा रहे ने थे, नमस्तम अमजबे, नमस्कार है प्रभु तेनो, तू अमजब है, तेरा कोई मजहब नहीं। मजहब एक रास्ता है, मजहब का अगर कोई माण भी कर रहा है तो रस्ते दे चे, ठीक है रस्ते चे, घर तक पहुंचने वास्ते रास्ता चाहिए है। घर पहुंच गया कोई मजहब नहीं, क्योंकि जिसका घर है, जिस दे घर दे जाना है, उसका कोई मजहब नहीं। सारिया नदियां सागर की तरफ जांदियां ने, हर नदी का किसी मुल्क नाल भी संबंध है, कुछ धार्मिक क्रियावां नाल भी संबंध है, इलाके नाल भी संबंध है, ते हर नदी का अपना नाम भी है। ये गंगा है, जमुना है, गोदावरी है, नर्मदा है, सतलुज है, ब्यास है, रावी है, चनाब है, जेलम है, ब्रह्मपुत्र है, इन्हों का इलाकों नाल और मुल्क नाल संबंध है। असी कह सकते हैं दरिया हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान दे वगदा है। फिर इन्हों के नाम ने, फिर दजला है, फरात है, ये इराक दे विच वगदे ने, तो मुलक ते इलाके दा संबंध उन्हां नाल जुड़ंदा है, भी ये दरिया इराकी ने, इराक दे ने, उत्थे वगदे ने, दजला फरात उत्थे वगदा। नील नदी मिस्र दे च वगदी है, तो असीं कह सकदे हां इह ते मिस्री है, इजिप्शन है, मिस्र दे च वगदी है, उस इलाके नाल इसका संबंध है, इसका नाम है। थेम दरिया इंग्लैंड दे च वगदा है, असी कह सकते हैं इसका इंग्लैंड नाल संबंध है, इसका नाम थेम है। पर जब सारे सागर दे चलीन हो जाते हैं, सारिया का नाम इको हो जाता है, कि सागर, ना गंगा ना जमुना, ना सतलुज ना ब्यास, ना रावी ना चनाब, ना गोदावरी ना नर्मदा, ना दजला ना फिरात, ना नील ना थेम। जब भी कोई प्रभु दे चलीन हो जाता है, गुस्ताखी माफ मैनू कहण देना, ना वो हिंदू है, ना सिख है, ना मुस्लिम है, ना ईसाई है, ना जैनी है, ना बौद्धी है, ना यहूदी है, ना पारसी है। जितने चिर तक पारसी है, यहूदी है, हिंदू है, इतने चिर तक नदी ते है, सागर नहीं है, नहीं है, समुन्द्र नहीं है। मेरे ख्याल इतने ही शब्द बर्दाश्त कर सकोगे, इतना ही कहना मैं। कई बड़े तार्किक होंगे, कट्टर बड़े होंगे, और कमाल की गल, अकल तो बिना अकल का दावा, अकल नूं ते छिके ते टंगे होए अकलमंद होने का दावा धार्मिक जगत दे इस तरह चलता है। फिर पता की है, किसी एक कद नूं अकल आ जाए तो इस तरह की गल कवे, फिर कटो उसके बंदवन, बिठाओ उसनों तत्ती तवी, कटो उसकी गर्दन चांदनी चौंक दे, ईसा सोली ते लटकदा पिया। मुहम्मद साहब दे बदर की लड़ाई दे अगले दो दन तोड़ दिते गए। सुकरात नू जहर दा प्याला दे के मार दिता गया। हुण पुछिए, एक नू तुसी सूली ते टंगे, एक नू जहर दे के मार रहे, एक दे दन तुसी तोड़ दिते, एक नू तत्ती तवी ते बिठाया, एक नू चांदनी चौंक दे गर्दन कट दिती है। फिर उन्होंने फरजंद, उन्होंने बच्चों नू, पोतरियां नू तुसी दीवार दे चिणदे पाया, किसी दे बंद बंद कट रहे हो, किसी नू उबल दी देग दे च बिठा रहे हो। पहले दसो इन्होंने चोरी की थी है, यारी की थी है, बलात्कार किया है, किधरे कतल किया है, एक भी जुर्म नहीं, इन्हों का एक कसूर है कि यह बेकसूर है। कसूर वारा दे कठ दे च बेकसूर होना भी एक कसूर है, गुनाहगारा दे कठ दे च बेगुनाह होना भी गुनाह है।

परिपूर्ण परमात्मा ने मनुख नु दो तन दिते ने, एक अस्थूल एक सूक्ष्म। वो जो सूक्ष्म है वो मन है, और जो अस्थूल है वो तन है। रोग अक्सर तन दे तल ते प्रगट होंदे ने, और सोग अक्सर मन दे चौंदा है। इस तरह रोग ते सोग दे सारी जिंदगी लंघ जांदी है। सूक्ष्म शरीर सोग नाल ग्रसिया होंदा है, और अस्थूल शरीर रोग नाल ग्रसिया होंदा है। सोग किस तरह दूर होवे और सोग की है? चाया सी कुछ हो गया कुछ, सोग। मंगी सी कुछ और चीज, मिल गई है कुछ और, सोग। जाना सी किसे होर पासे, पहुंच गए किसे होर टिकाने ते, सोग। आवना सी किसे होर ने, आ गया कोई होर, सोग। मन दी ख्वाहिश तो उल्ट जो कुछ भी हो जांदा है, सोग नु जन्म देंदा है। रोज रोज असी जो कुछ चाहते हां नहीं आंदा, और उस तो विपरीत हो जांदा है, तो मन सोग नाल भर जांदा है। हर नवा दिन नवे सोगां नु जन्म देंदा है, क्यों कि हर दिन कुछ साड़ी मंग ते हुंदी है, कुछ साड़ी चाहत ते हुंदी है। ते जद भी उस तो विपरीत हो जाए, और बहुत वड्डे पद्धर ते हो जाए, तो मन दे तल ते सोग पैदा हो जांदे ने। कबीर कहंदे ने, जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरे चितवे होए, अपना चितव्या हर करे, जो मेरे चित ना होए। एक ते मेरी चाहत है, एक प्रभु दी चाहत है। प्रभु दी जो चाहत है उस नाल मैं राजी नहीं, मेरी जो चाहत है वो पूरी नहीं हो रही, तो सोग। ये 20वीं सदी रोगा नाल ते भरी है, पर मानसिक सोग नाल भी भर गई। अजो के विज्ञानक मनोचिंतक इसका इलाज लभदे ने वक्ती मनोरंजन। मनोरंजन मन सोग दे चे तो कोई मनोरंजन, कोई खेल, कोई तमाशा, कोई रंग, कोई रूप, इनू वेखो, उस दे च बैठो, खेलो, ताकि सोग मिट जाए। पर कौन इना स्याणियां नू दसे सोग मिटदा नहीं, वक्ती तौर ते सोग भुलदा है। और जैसे जैसे उम्र वद्दी है सोग भी वद्दा है। सोग देच होके होंदे ने, सोग देच पछतावे होंदे ने, सोग देच साड़े होंदे ने, सोग देच जलन होंदी है। सोग एक ऐसी अग्नि है जिस दिच मनुख दी सोचन शक्ति भी जल जांदी है, मनुख दी विचार शक्ति भी जल जांदी है, मनुख दा सदाचार भी कई दफा जल के खाक हो जांदा है। सोग एक ऐसा मानसिक रोग है। तन दिच रोग होवन, मन दिच सोग होवन, तो ऐसे पुरुष नो किसे होर नरक दिच जान दी लोड़ नहीं, नरक भोग रहे है, ये नरक दिच जी रहे है। नरकी क्यों, इंज कहिए कुंभी नरक दे जी रहे है। तन दिच रोग ने, मन दिच सोग ने, जिधर जा रहे है रोग ते सोग इस दे नाल जा रहे ने, इदे नाल बैठे ने, बिल्कुल कोल ने। अज तक मानसिक सोग नू दूर करन वास्ते जितने मनोरंजन आए ने, और रोज नित नवे पैदा हो रहे ने, सोग नू मिटाण विच असमर्थ हो रहे ने, क्योंकि कोई भी मनोरंजन बहुत लंबे समय तक टिकदा नहीं, पुराना हो जांदा है। हर तरह दा मनोरंजन, चाहे कोई रूप है, चाहे कोई रंग है, चाहे कोई तमाशा है, चाहे कोई खेल है, चाहे कोई गीत है, चाहे कोई संगीत दी धुन है, मन ऐसा है सबनों पुराना कर देंदा है। क्यों? मन चंचल है।
चंचल दा मतलब ही है चल चल, जो चल रहे चल रहे चल रहे, तो मनोरंजन ते चल नहीं रहे, अपनी थां ते रुके होया। चाहे रंग है चाहे रूप है, तमाशा है खेल है, इते अपनी थां ते खड़ा है, मन चंचल लंगे अग्गे। तो मन दे तल ते सब कुछ बेमैनी हो जांदा है, और उस बेचैनी परेशानी दी हालत नूं सोग कहिंदे ने। इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है मुरझाया होया बैठा है, इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है औके भर रहा है, इस तरह दा मनुख जिथे बैठा है एक अपने आले दुआले बड़ा दुखत वातावरण पैदा कर रहा है, सोग भरिया। एक सोगी कोल बैठ के एक सियाने तो सियाणा मनुख भी प्रसन्न चित नहीं बैठ सकेगा। एक सोगी कोल बैठ के बड़े तो बड़ा दार्शनिक भी मन दे तल ते लड़खड़ा जाएगा। एक सोगी कोल बैठ के बड़े तो बड़ा आनंदत भी महसूस करेगा, मेरा आनंद उड़ गया खो गया। या इंज भी कह लो, सोगी मनुख कोल कोई बैठना पसंद भी नहीं करता। सोग ग्रसे मनुख कोल हर मनुख दूर भजना चाहता है, पर इस भुलेखे च भी नहीं पैना चाहिदा। मुस्कुरांदे होए चेहरियां दे थल्ले भी सोग हुंदे ने, हसदी होई जिंदगी दे थल्ले भी बड़ा भयंकर सोग हुंदा है। और सोग है अनंत चिंतावां दा मजमुआ। राजयोग भर्तरी इसका एक बड़ा सुंदर खुलासा पेश कर देने कि मनुख सोग देच किस तरह ग्रस्त हो जांदा है, किस तरह फस जांदा है, और ए आले दुआले किस तरह दूषण वातावरण पैदा कर देंदा है। सोगी बंदे दा पत्नी नाल संबंध नहीं जुड़दा, सोगी मनुख दा मां बाप नाल रिश्ता नहीं बनदा, सोगी मनुख भरावां तो दूर रहिंदा है, पुत्रां तो दूर रहिंदा है, सोगी मनुख तनहाई बैठना चाहता है। सोग इतना अंधकार पैदा कर देंदा है, और सोग मन नूं इतना सुकोड़ के रख देंदा है कि हुण संकुचित रहना चाहता है, किधरे एकांत तनहाई दे च बैठना चाहता है। सोग इस नूं महफिलां दे च नहीं बैठन देंदा, सोग परिवार नाल संबंध नहीं जोड़न देंदा, सोग किसी पदार्थ नाल भी संबंध नहीं जोड़न देंदा, सोग संकोच के रख देंदा है, सोग सिकोड़ के रख देंदा है, सोग निचोड़ के रख देंदा है। और ये तनहा बैठ के अपने सोग दे च ही जीना चाहता है, और ये सोग पता नहीं कितने तरह के रोगों नूं जन्म देंदा है, कितने तरह की मानसिक बीमारियां नूं जन्म देंदा है। इत्थे तक कौन पहुंचांदा है, इच्छावां पहुंचांदियां ने, ख्वाहिशां पहुंचांदियां ने, क्यों पहुंचांदियां ने, पूरियां नहीं आउंदियां। इस नूं इंज एक सरिता एक नदी दा रूपक अलंकार बना के राजयोग भर्तरी इस सोग दी रूपरेखा पेश कर देने। आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी, तृष्णा त्रंग खरी व्याकुली गंभीर है। ये जो व्याकुलता है, ये जो बेचैनी है, व्याकुल बेचैन, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, मन दे तलते क्यों, ख्वाहिश है, आसावां इसके अंदर चल रही ने, किसे किसे इच्छा नाल संकल्प चल पेंदे ने, नहीं तो इच्छावां चलदियां रहिंदियां ने, उन्हां नाल संकल्प नहीं चलते। इच्छा ओही पूरी करन लई मनुख दृढ़ हो जांदा है जिस दे नाल इसकी संकल्प शक्ति चल पवे, हां ये इच्छा मैं पूरी करनी है, बाकी इच्छा बह जांदियां ने। ए इस तरह है दरिया ते बह रहा है, बस ओही पानी साडे शरीर दा हिस्सा बनिया जो पी लिया सी उस वक्त दरिया चो, ओही पानी साडा हिस्सा बनिया जो असी अपने खेत नूं सिंच दिता, बाकी तो वग रहा है। इच्छा
पूरी करन देच जद मनुख दृढ़ संकल्पित हो जांदा है तो ओ इच्छा ते कई दफा पूरी हो जांदी है ते जे ना पूरी होवे तां वी इक रेखा छोड़ जांदी है बाकी इच्छावां इन चलदियां रहंदियां ने जिवें नदी बह रही है बावें नदी दे कोल घर है बह रही है पर नदी नाल उतना ही मतलब है जो पी ले है पानी ओही हिस्सा बने है बाकी वग रहे है दिन रात ख्वाहिशां दी सरता अंदर वग रही है इच्छावां दी नदी अंदर चल रही है आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी इस आसा रूपी नदी दे च पानी केड़ा है संकल्प जिस जिस इच्छा नूं पूरी करन वास्ते दृढ़ संकल्पित असी हो जांदे हां ओ उस नदी दा जल बन जांदा है उस नदी दी धारा बन जांदी है आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी तृष्णा तरंग खरी इस आसा रूपी नदी दे च अगर संकल्प पानी है तो तरंग की ने तृष्णा क्योंकि जिथे इच्छा है उथे संकल्प ते पैदा होणगे ते जिथे दृढ़ संकल्प हो गया इच्छा दी पूर्ति लई उथे तृष्णा ते प्रबल होवेगी लाजमी होवेगी व्याकुली गंभीर है ए नदी गहरी कितनी है इदा पाट कितना गहरा है ए चौड़ी कितनी है ए गहरी कितनी है तो ए राजयोगी ए महान संत मन दियां गहराइयां नूं समझण वाला ए महायोगी इंज कह रहे है व्याकुलता ही इसकी गहराई है बेचैनी ही इसकी गहराई है और एक हकीकत है बेचैनी अजे भी नाप तोल दे च नहीं आई कोई ऐसा पैमाना नहीं कि नाप लईए व्याकुलता कितनी गहरी है बहुत गहरी है बहुत गहरी है इदियां जड़ा नहीं लभदियां इदी तय नहीं लभदी व्याकुलता ही इसकी गहराई है जिथे इच्छावां ने उथे संकल्प ने जिथे संकल्प है उथे तृष्णा है और जिथे प्रबल तृष्णा दे तरंग ने व्याकुलता ते उथे है ही ये इसनु उल्टा के कह दो ए बेचैन क्यों है तृष्णालु है ए तृष्णालु क्यों है एदे अंदर संकल्प ने संकल्प क्यों ने एदे अंदर इच्छावां ने इच्छा दी पूर्ति करना चाहता है आसा नाम सरी मनोराज नीर भरी तृष्णा तरंग खरी व्याकुली गंभीर है आलम ते इस तरह कहंदे ने जिंदगी नापी जा सकती है चलो वध तो वध कह लिए 100 साल तृष्णा नहीं नापी जा सकती व्याकुलता नहीं नापी जा सकती और ये जिहड़ी आसा नदी है कितनी लंबी है जमीन दे ते वगदियां या नदियां दे ए बकायदा धारावां नापियां जा चुकियां ने ए किन्नी मील लंबी है इदा पाट किन्ना चौड़ा है एक गहरी कितनी है एक कोई नदी है जो मन दे च वग रही है ना लंबाई नाप दे चाहुंदी है ना चौड़ाई नाप दे चाहुंदी है ना गहराई नाप दे चाहुंदी है वो है आसा धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने आसा विच अत दुख

600 साल भी नहीं भूलते। मैं श्योर हूँ कि ये मुझे मारेंगे। मैंने इंदिरा जी को ये इल्हाम था कि मारेंगे और उन्होंने मारा। जनरल वैद्या को उन्होंने पुणे में जाके मारा। जनरल डायर को लंदन में जाके मारा। इन फॉर्मों की पेशेंस का टेस्ट मत।